0: मन में कच्ची वरुण कशी दिसते।
1: नमस्कार, मी शोभा पालवे, तुम्ही ऐकत आहात बदलत्या नगरचे लोकमाध्यम रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।

मंडळी, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा. नगरचा अंतरंगामध्ये मी आरजे कोमल आहे तुमच्या सोबत. मंडळी, खूप साऱ्या गप्पा मारल्यात, अजूनही खूप साऱ्या गप्पा माराव्याशा वाटतात, पण वेळ अभावी आपल्याला इथेच थांबावं लागणार आहे. पण जाता जाता ऐकत असतो एक कविता, कारण कवितेचे शब्द थोडे असले तरीही भावना खूप साऱ्या असतात. आजच्या कवितेचं नाव आहे हार नाही होती. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सो सो बार फिसलती है. मन का उत्साह रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जो जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में. मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जाते जाते यही कहूंगी, कोशिश करते रहो, जीत आखिर हो ही जाएगी. सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM आवाज आपकी. कल सुबह फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे नगर से अंतरंग इस मॉर्निंग शो में. सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमसा.

0: एक तरफा तराजू
1: क्या शू,
0: आ तेरी हंसी मेरे आंसू
1: क्या शू,
0: आ घुट घुट की क्यों सांस लूं
1: क्या शू,
0: उसे देगा क्या हिसाब तू।
2: पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो।

0: आर जे आदी। आणि आजचा सेगमेंट आहे पिक्चर अभी बाकी है, अर्थात या सेगमेंट मध्ये आप ऐकणार आहोत एकाच चित्रपटातली गीतं आणि कथानक। तेव्हा मित्रांनो, आजच्या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत 1978 साली सुपरहिट झालेला डॉन। आजचा सेगमेंट आहे पिक्चर अभी बाकी है, यामध्ये आपण ऐकणार आहोत एकाच चित्रपटातली गीतं आणि कथानक। आजचा चित्रपट आहे 1978 साली प्रदर्शित डॉन। मित्र हो, 1978 साली सुपरहिट चित्रपट प्रदर्शित झाली ज्यामध्ये डॉन, त्रिशूल आणि मुकद्दर का सिकंदर या चित्रपटांचा समावेश होतो। त्याचबरोबर सत्यम शिवम सुंदरम, घर, आखियों के झरोखोसे, पती पत्नी और वो, गमन, आझाद, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कसमे वादे, विश्वनाथ, दरवाजा, साजन बिना सुहागन, स्वर्ग नर्क, असे अनेक धाटणीचे चित्रपट तयार झाले। पण या सर्वांमध्ये सरस आणि लोकप्रिय ठरला तो म्हणजे डॉन। तेव्हा आजच्या पिक्चर अभी बाकी है या सेगमेंटमध्ये आपण ऐकणार आहोत 1978 साली प्रदर्शित डॉन या चित्रपटातली गीतं आणि डायलॉग।
1: क्या नाम बताया तुमने?
2: सोनिया।
1: सोनिया, सोनिया मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती। एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगाए और एक वो जो बहुत जल्दी आ जाए।
3: तुम लोग ये भूल गए कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
4: दरवाजा खुला ही रखो संतरी, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन इस बार इस दरवाजे से बाहर जाने के लिए नहीं, बल्कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए आऊंगा।
5: अबे ओ गंजे, ये आंखें किसी और को दिखाना, इतना मारूंगा सीधा हो जाएगा। अबे सीधे बैठ, नहीं तो इतने हाथ मारूंगा थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा।
6: चाकाल, इसकी चाल को समझो। ये चाहता है तुम इससे झगड़ा करो ताकि पुलिस इसको हमसे अलग रख दे।
5: अरे छोड़ दो छोड़ दो इसे, झगड़ा करने के लिए मर्द का कलेजा चाहिए। ये साला चूहा क्या लड़ेगा।
7: पान?
8: हाँ हाँ पान।
7: अरे पान लावा,
8: ये बनारसी पान है, बनारसी।
7: अरे लावा लावा ये। हाय हाय हाय, जवाना होई गवा पान खाए हमका। पहले पान फिर गान, का कहा तो भैया?
4: ये डायरी नहीं, बैंक ऑफ स्मगलर्स एंड लिमिटेड की चेकबुक है।
9: क्या लिखा है इसमें?
4: इसमें लिखा है कि जे जे अब लखपति बनने वाला है। काका, इसमें नारंग और उसकी सिंडिकेट के एक एक मेंबर का नाम और पता है, और साथ में ये लिफाफा जिसमें पुलिस के नाम डीएसपी का ये खत है कि डॉन मर चुका है और उसने विजय नाम के किसी आदमी को डॉन की जगह अपना इन्फॉर्मर बनाकर उन लोगों में भेजा है। काका, नारंग और उसके आदमी इन चीजों की मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे।
10: मैं यहाँ आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
11: यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ मैं ही जानता हूँ मलिक साहब, चारों तरफ पुलिस फैली है।
10: लेकिन ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो?
11: मलिक साहब, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं एक जंगली जानवर की तरह भाग रहा हूं, बस भाग रहा हूं। अगर आप मुझे एक मौका दिलवा दें तो मैं अपनी मासूमियत का सबूत ला सकता हूं, आपको साबित कर सकता हूं कि मैं डॉन नहीं हूं, विजय हूं।
10: तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम विजय हो।
11: क्या आप जानते?
10: हां, मैं डॉन को भी अच्छी तरह जानता था, इसीलिए जानता हूं कि तुम डॉन नहीं।
11: आप जानते थे तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया?
10: उसकी वजह मैं तुम्हें अभी बताता हूं।
11: मलिक साहब, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मलिक साहब हम चारों तरफ से गिर गए हैं।
10: हम नहीं, तुम
11: जी।
10: हाँ विजय, जिस तरह तुम डॉन नहीं हो उसी तरह मैं मलिक नहीं हूं।

0: ये सब मेरे आदमी। तुम मेरे चग्गू से निकल गए थे, लेकिन किस्मत ने प्लेट में रखकर तुम्हें वापस मेरे हवाले कर दिया।
1: कमांड बॉयज, कमांड टेक हिम।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में

कैसे चक्कर में पड़ गया हाय हाय फंसाई मैं तो सा सीधा साधा ला भाला अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

0: खई के बहन बनाओ रसबाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
1: ओ मेन साहब हमरा संग नाच

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रस बहला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।